अंत मूर्ख अंत घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख काल वाय संख पापी पाप असंख मूर यार करे फिर असंख मलेर मार पाए असंख निंद

कृता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या दरनाल गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जती सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच प्याले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सी तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन।

कर कर देखै कीता आपना ज्यो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आ

लोग सतबंधता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उड़े उड़ आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कमण खिलावे कमण चुगावे मन मैं सिमरन करिया सब निधान दस्त अष्ट सिधान ठाकुर करतल धरिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर

तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चूज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवा है जो सेवा है तुझी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावै हर त्यावै तुझी से जन जुग मैं सुखवासी से मुकत भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भउ

हर जी ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बहु स्मृत सासत जी, कर करिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख।

सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। तू जो सदा हमारे पक्षा, श्री अस्तुझ जू कर हो रक्षा। राख लिहो मुहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस संता। काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा।

तेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभो आद जुगाद स्वरूप स्वयं पहो अवरिच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके

अवे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन सुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया।

बचै तिसका होए उदारो। ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिया

साजना के संग पौजल तारियम, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियम। ते साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस समृत सुख होए सगले दुख जाहे। ते सा

कद पसी दीदा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तक गुरु निस्तारे।

वाहे गुरु साहिब जी, एक ओंकार सत गुर प्रसाद अगम अपार अनंत गुर अवगत अलख अपहेव पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावे नाद बाद विस्माद राग राग गुण गुण गावे सुन समाद अगाद साद संगत सपरंपर अवगत अलख अपहेव अगामित

महाराज कह रहे ने इंज अरदास करया कर। महाराज की बाणी नू पावन पंक्तियां नू अरदास बना के गुरु अर्जन देव जी उस निरंकार की तुरकी बाणी उच्चारण कर रहे ने, अरदास कर रहे ने। कृपा करो मेरे हिरदे विच तुहाडा वस, कृपा निध बसो हृदय हरनी। कहंदे ने बुद्ध मेरा ध्यान ऐसा बन जाए, तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत, दास तुम्हारे की पावो तूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतते होत पुनीता, हर कीर्तन गुण गावो। कीर्तन बंदगी है, कीर्तन परमात्मा दी याद बख्शिश दा भंडार है, जिन्हां नूं सुनना ते गाउणा जाए। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी ए पावन अरदास साडे हिरदे विच वी, सच्चे पातशाह मेरे ध्यान विच, मेरी बुद्ध विच, बुद्धि विच ऐसी बख्शिश बना दे कि मेरा ध्यान तुहाडे वल लगा रहे।

ऐसी भावना, ऐसी अरदास महाराज कह रहे ने है न विरले, कहते ने कोटन में को करोड़ा दे विच ने जेड़े नारायण जे चीत परमात्मा दे चरणा विच उन्हों याद करते ने ते उन्हों अरदास करते ने। मंगदे तां आपां सारा कुछ है, पर दुनिया भी पदार्थ दुनिया भी सुख जरूर मंगने ने, इत्थों ही मंगना है, पर नाल नाल देन वाले नूं भी मंगना। जे पुत्र दी दात मंगी ना, कहिंदे ने फिर दात नाल ही नहीं जुड़ जाना, दात विच्चों देन वाले दाते दा शुकर करना। जे घर दी दात, गड्डी दी दात, निक्कियां निक्कियां दातां ने, महाराज कह रहे ने जे दातां मिलियां ने, कुछ ऐसे होंदे ने दात प्यारी विसरिया दाता, देन वाले नूं भुल गए फिर जदों लोड़ पई फिर मंगन लग पए। महाराज कह रहे ने फिर देन वाले नूं दाते नूं दातां विच्चों याद करिए, ते फिर तेरे वेड़े विच रौनकां बरकरार बनियां रहणगियां। भुल चुक दी खिमा सारियां संगतां नूं जी आया नूं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। सलोक।

साहिब के अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सोहिला सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार। सत गुर प्रसाद जयकर कीरत आखिए, करते का होए विचारो। तित घर गावो सुहेला, सिवरियो सजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सुहेला, हौ वारी जिस सुहेले सदा सुख होए रहा। हो नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार, तेरे दान है कीमत ना पवै तिस दाते कमल सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सजन असीसणिया जो हो वै साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सुमरिये नानक से दे अवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे उपदेश, गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जयकर करते कीरत होए, सो कर राग खड़ाई तोय रहाओ। विश्वे तसियां कड़ियां पैरा, दिथी वारी माहो हुआ। सूरज को रुतन एक, नानक करते के केते वे सराग तना। श्री महला पहला, गगन में थाल रव, चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध चरत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिसते चानन सब में चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरन लो बित मनो, आन दिनो मोहे आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हो जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बो भरिया में साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ। साकत हर साधना जान्या, तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडा है। अर्जन हर हर नाम सुमाने, दुख जन्म मरण बहु खंडा है। अवनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोखन ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, यहां खार चलो हर लाहा। गै बसन सुहेला, औद गटे दिन सरै नारे। मन गुर मिल का सुवारे रहो, यो संसार विकार संसे मैं तरयो। ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे, हो रसक्त कता तिन जानी। जा को आए सोए बया, जो गुरते मने बसेरा। निज

0: यह सुख मांगे
1: मुख कर संतन की पूरे।
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
1: तुदया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जा मेरा। बोलो जी, बोलना जी। अरदास इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक लई प्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होय सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौली लावे ताए सब थाई होय सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। निमाणिया दे मां निताणिया दे ताण मियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह। धन गुरु नानक साहिब जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु दाता। आप जी के मुबारक चरणा कमलों में अरदास बेनती है महाराज जी। आप जी के पाणी अंदर चार पहर दिन सुखा का बतीत होया अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन के दर देख के निहाल किया। रात के दीवाना की संपूर्णता आप जी के सुखासन साहब जी की सेवा सोहला साहब जी की बाणी का जाप किया गया। सेवा करद आप जी के सेवका पासों भुला चुका दिखीमा अपने सेवकों के सब दे कारज रास करियो सदा साज के निवाज के रखियो सारिया संगतां महाराज जो जो तुहाडे चरणा विच तिल फुल भेटावां लैके हाजिर होईयां सब दियां चोड़ियां भर के भेजना। सेवादार हाजिर ने रहना ही है सुखमय बतीत कराउणी। आप जी सचखंड पलंग ते विराजमान हो अमृत वेले फिर दर्शन देना जी। सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहि मिटावौ सिमरौ जास विसंबरिकै नाम जपत अगणत अनिकै वेद प्राण सिमरत सुदाख्यर किने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांकी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्व न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन्हें आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम मृद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन परवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी प्रभ कै सिमरन नीचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन कांत न पार सिमरै से जन जिन को प्रभ माया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भए सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल आकार हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक तीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाद अष्टपदी जेह मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हो वै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनिक माया रंग तिक न बुझावे हर का नाम जपत आघावे जे मार्ग जात केला तै हर नाम संगोत सुवेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत है पार पराही अनिक बिघन जय आय श्रृंगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनिक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबू न तू वै हर का नाम कूट पाव खू वै सा नाम जपू मन रंग नानक पाइये साध कै संग जिह मार के गन जाहे न कोसा हर का नाम मुआ संग तोसा जय पैड मंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जा पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महाप्यानु तपत बोकामु तै हर के नाम की तुम परछाम जा त्रिखा मन तुझ आकर कै तै नानक हर हर अमृत बर कै भगत जना की बरत नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्मजन की नो दानु मंथन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक दीना हर धन जन को आप्रभु दीना हर हर जन कै ऊठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गामु सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संतरित वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईए नाम तुल कछ अवर न हुए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान घट शास्त्र सिमृत विख्यान जोग व्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रत्ना शरीर कटाए होमे कर राती व्रत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास पीसर थी वै अगन माहे होमत प्राण कनिकसव है वर भूमदान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम मत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै तो भी होम मैं न जावै हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर्थ दे छुट्टै गर्भ गुमान न मन ते उठै सोच करै दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबू न भिख्या टरै जल तो वै को ते अनीत शुद्ध का होय काछी पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियान भजम का पव व्यापै अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापै एक अनेक गन्ने बुझै कोट पाव दर गहने चीजे छूट सुनायु पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जी को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै सा संगे हो मैं छोरै
जे को जन्म मरण ते डरै सा जिन की सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल दासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभिमान। आप इसको जो जाने नीचा सू गणिये सब ते ऊंचा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम जिन खट खट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना पिकै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप नहीं लिपा। निर्धन को धन तेरो नाओ निथावे कौ नाओ तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान। करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानू वापे अपन संगा प्रभराते। तुमरी उस्त तुम ते होए नानक वर्ण जानस कोई सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म। हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया। सगल उत्तम में उत्तम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी हर को जसुन सुन बखानी सगल थान ते उत्तम था नानक जी घट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण यार या निया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी या तृष्टि तरक नानक निभही नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू सासवार सीगारिया गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझै प्यार है दूध पर जोगन भोजन सुख सूद। बिरद भयाओ पर साक्षैन मुख पयाओ बैठ को दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले तो नानक सीजै। ये प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै। ये प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला। ये प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करनी तरसना तिसे त्याग वर संरचना। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नान काड लिहु प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सा सदा जूरे ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टैल पावै दर गै मान तिसे बिसारै मुक्त अजान। सदा सदायो भूलन हार नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौटी संग रचै सा छोड़ छूट संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै तो हे गर्द प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पदत बिकराल नानक काट लिहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात। बाहर बेकंतर मल माया छपस नाही कछ करै छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसी तरह अथाह। जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात। सुनंदा कैसी मार्ग पावै कर गै लिहोड़ निभावै। कहां बुझारत बूझै डूरा निष्कहियै तो समझै पूरा। कहा विष्णु पद गावै गुंग जितन करै तो भी सुर भंग। कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू आ उस भवन। करतार करुणा में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाय सुआ वैना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत कील माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह। याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम तय अरदास जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जानै तुमरा अंत
ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गतमित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी। श्लोक दीन हार प्रभ छूड़ कै लागह आन सुआए नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस भीर ले तो मूड़ा कहु कहा करे निष्ठा कुरस्यो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन दूलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी वस्तु से आज्ञा राखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुण करे निहार नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हित सर पर होत जान अनित बिर की छाया सो रंग लावे को बिन सहो मन पछतावे ज्योति सहसो चालन हार लपट रहो तय अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे नेही ताकू हाथ नया वह की मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान काप ले लाई मिथ्या तन धन कुटंब सुबाया मिथ्या हम मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्त बस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमानु मिथ्या आप सुपर कर्त गुमानु अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को ही रह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपात मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तनी पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ धाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछवर कमावत मन ही प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बार पेक न काहु पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्मे मरे जिसका अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप मन आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा पाप से अनुप सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस भाव चले लड़ लाए तान तनंतर रहा सुमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत काहे तिष्ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तलावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै ध्याय सदा मणि अंदर ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना ये प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग
जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्यागत वर लुभाव है। जे प्रसाद सुखशेष विजय मन आठ पैरता का जस का विजय। जे प्रसाद सब को मन है मुक्ता को चस रसन बखाने। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गय मान पावै नानक पद सिद्धि कर जावै। ये प्रसाद रो कंचन देही लिव लाओ राम स्नेही। ये प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहतु। जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु ऊचे। ये प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे। ये प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। ये प्रसाद शुभ हस्त सुवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी। ये प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सहत्याई। तिसै त्याहि जो एक अलकै इहां उहां नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेर सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेर निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद भिखे विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। ये प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता शिवराच। ये प्रसाद सबकी गत हुए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मातूतम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मया आपु कछु न किनहु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानकिन कै कछु नाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साधना की चर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुखु जल होत साध संग मन सगली खोत। साध के संग मिटै अभिमानु साध के संग प्रगटै सुज्ञानु। साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतनु साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभु माहि समानी। साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै। साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग नकत हूं तावै साध संग स्थित मन पावै। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैरु साध के संग न भीगा पैरु। साध के संग न ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध के संग न ही होता साध के संग तजै सव्याप आपे जाने। साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू तावै साध के संग सदा सुख पावै।
सासंग वस्तगो चरल है, साधु कै संग जर सह, साधु कै संग, साधु कै संग जर सह, साधक संग विषय थान उचय, साधु कै संग महल पहुचय, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधानु, नानक साधु कै कुर्बानु, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे, साध संग धर्म राय कर सेवा, साधु संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधक संग श्रव थान गामु, नानक साधक संग सफल जनामु, साधक संग नहीं कचकाल, दर्शन पेट तोत निहाल, साधक संग कलोकत हरय, साधक संग नरक पर हरय, साधक संग इहा उहा सुरेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उतरै साध सुन रसै, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मनते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध के संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कर ढीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जीता सुने तीता बखियाने, साध की उपमा थे गुण ते दूर, साध की उपमा रे भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सुधा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेकै एक सबिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागै तुल भवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा को खोतै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगासु, जैसे तारु पर्याकासु, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समानु, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना, तम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टम मृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवारु, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खुजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी कंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जिकुत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम, सर्व में पिखे भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, परतर रूप न पिख है नेत्र, साध की टैल संसंग हेत करना सुने, काहू के निंदा सब थे जाने आप उसको मंदा, गुर प्रसाद विखिया पर हरे, मन की वासना मन तेट रह, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को वैसा पर सो, वैसन सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हो भिन्न, कर्म कर तो हो वह निकर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाच, केवल भगत कीर्तन संग्राच, मन तन यंत्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ नाम जपावे, नानक वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासु पापा मल को वै, दिस भगवती की मत उत्तम हुए, भगवंत की टैल करे नित नीत, मन तन अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सोदय, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमृत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवरना को देव देश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए, कर कृपांतर उतारे, पशुप्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रो मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तय न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, ताज दसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गय परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोची फरे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तुम हितावे, जीवन मुख सुख आवे, तैसा हर्क तैसा सोग, सुदानंद तय नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म की सगले ठाओ, जित जित कर राख है तैसा तिन्नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभाव है सोई फुन हो, असुरु आप अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रभास, पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जानंत न पार आवार, नानक रचना प्रभ रचि बहुविधनिक प्रकार, अष्टपदि कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट गवका विचार है, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते कंत न पावै,
कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंधा ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिघातम निकोर, कई कोट पर दर्व को ही रह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश पर माहे, जी जिद लाओ तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जती जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पात्र वृख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जी जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिये चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वरम थीवे, कई कोट जकी नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सब ते नेरै सबूते दूर, नानका बलक त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरै, कई कोट बो जोनी फिरे, कई कोट बैठ ती काए, कई कोट काल तक पाए, कई कोट कीतनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम शक्ति लिव लागे, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्मै पारब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पारब्रह्म तिन लाखा रंग, जिनको हुए आपसु प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट काणी अर कांड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुट किन्नो विस्तार, कई बार फसलो पासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने भोपाल, प्रभ ते हुए प्रमाइस माता कंत न जाने, कोई आपे आप नानक प्रसोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हो तातम प्रगास, कई कोट तत् के बेती सदा निहार है, को नेत्री, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पैसा सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सह समावे, अपने जन को सा सा समारे, नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई, नान तिस बलिहार न जल थल मैयल सोय, अष्टपदी करण करावन करण जोग, जो तिस भाव है सोई हो, किन मैं ताप तापन हार, अंत नहीं किछ पार आवार, हुक्मे तार तार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रिहा समाई, प्रभावे मानु गत पावे, प्रभावे तां पात्र त्रावे, प्रभावे बिन शास्त्र राखे, प्रभावे तां हर गुण भाके, प्रभावे तां पथ सुधारे, आप करे अपन विचारे, तू असुरियां का स्वामी, खिले विकसे अंतर जामी, जो पावे सुकार करावे, नानक दृष्टि वरना आवे, कौ मानुक ते क्या हो आवे, जो तिस पावे सुई करावे, इसके हाथ वेता सब किचले, जो तिस पावे सुई करे, अनजान लिखिया में रचे, जी जानता अपना बचे, पर में पूला दे दिस्तावे, निमक माहे चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी पग दे, नानक तिजन ना मिले, खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म करीब निवा, जा का दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे, जा को अपनी करे बख्शीशता का लेखा न गने, जगदीश जीव पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनता बनाई, नानक जीव देख बढ़ाई, इसका बल नाही साथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो स्वभाव है सोई पुंथी, कबू उच नीच में बसे, कबू सोग हर करंग हसे, कबू निंद छिंद व्यवहार, कबू बकास पयाल, कबू बिता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबू निरत करे बोपात, कबू सोए रह दिन रात, कबू मा क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तिरवाल, कबू हुए वह बड़ राजा, कबू फेकारी नीच का साजा, कबू अब कीर्त में आवे, कबू भला भला का आवे, जो प्रभरा कहते हुए रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबू हो पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू चढ़ती स्नान, कबू सिर साधक ज्ञान, कबू कीट पतंग हस्त पतंग हुए जियान, के जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे निचावे, जो तिर भावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोई,
कबू सात संगति उपावे उस शांति भवन नयावे अंतर हो ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नावृत्ति करांग सदा वसय पार ब्रह्म के सांग जो जल में जले आये खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गौन पाए विश्राम नानक प्रभु का सदगुरु वान श्लोक सुखी वसय मस्किनी आय आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारी आ नानक गर्भ गले अष्ट परी जिसके अंतराज विमानु सो नरक पाती होवत स्वानु जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वह जन्म मर भोजन परमावे तन पुम का जो कर गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बिसावे नानकी हां मुक्ता गै सुख पावे तनमंता हो कर गुर भावे तिन समान का संग न जावे बोलस कर मानु ऊपर कर आस पल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी तर बराए करी कुआरी गुर प्रसाद का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिर तारे निकट वस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतारण के जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तुसे भलाए निकट न आवे सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछुए तब इसको सुख नाही कोय जा बे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब धारे को बैरी मी तब लगने चलना ही चीत जब लग मु मगन संग माई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा थे बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लग कुटता वै तृप्त न आवे माया पाछे पावे भोग बिकिया के करे न तृप्ता वै कब कमरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बृते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होय बड़भागी किसे प्राप्त होए कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किसकी नसु अपने रंग सब ते दो सबु कै संग बूझे देखे करे विवेका पह का पह निक मरण बिन से आवे न जाए नान सदी रह समाये आप दिशे समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप किनु अपन विस्तार सब कुछ कहो करने हाथ उसते बिन कहो कि जो थान तनंतर एक कैसो अपने चलता करने हार कौ तक रंग आपार मन में अमन अपने माए नान कीमत कह न जाए नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने वकियानी सच सच सत सब किन्ना कूट मदे किन्ने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कर सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हारु संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतारु अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलिन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन तान प्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक बेहतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं चलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहि नान संत पावे तोय फिगत पाए संत खंड गमाए तताई संत खंड खिंडिक न पाई संत का निंदक माथियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नान संत पावे तुसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुख ते टरे
संत के दुखी को नाही ठाऊ नान संत पावे थाले मिलाए संत का दुखी अद बिस्ते टूटे संत का दुखी किथे काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर की तोता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन बीजा पे ही काहे संत के दुखी गवर्ना रखन हारू नान संत पावे तां ले उबारू संत का दुखी ओं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव गिंदर नहीं त्रापै संत का दुखी छुटे केला जो बुआड़ तिलखी तुमाही दुहेला संत का दुखी धर्म ते रह तू संत का दुखी सद मिथ्या कहत कृत निंदक कतुर ही भया नानक जोत सुभावे सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजा नयासा संत का दुखी उचल निराशा संत का दुख न तिष्ठ कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पै कृत न मिठे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट दिस क्यों करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की सद करो दिन रात सत्याहु सास गिरास सब कुछ वर्त तिसका किया जैसा करे तैसा कोठी अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़भागी नानक जन से रूप तजो सियान सोचनो सिमरो हर हर राय एक आसर मन रखो नानक दुख भरम पो जाए पदी मान की टेक वृत्ति सब जान देवन कोई कह भगवान जिसके दिए रहे अघाए भव न तृष्ण लागे आए मारे रखे कुआ मान कह कुछ नाही हाथ जिसका हुक्म सुख होए जिसका नाम रखंत परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई इष्ट मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेक ठाकुर का रंग सा संग बिन सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिठे बाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर

ना बुझे सास सुन हर हर जस कहे तू सर्व रूप तिहर रह दिन कीर्तन केवल बखियान रिश्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिजन किया सात इसकी कट्टी है जमकी फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नानक किसे न लागे दूख जिसको हर प्रमन चित आवे सो संत सुहिला नहीं डुलावे जिस पर भी अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद सब उजिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोई असूल न किच जन्मे न किच मरे अपन चलता भी करे उन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट अपे आप सगल में आपने जूत रहता प्रताप अपना सीना ही किच कांड धारण तारे हो ब्रह्मंडल कपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुशोभावंत सगल संसार उतरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सब जपय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम करमान जो किच करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसै हर शाम सह सुभा होवे सो हुए करने हर पछाणे सोए प्रभ का गिया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिसमाय समायो सुख निदान हूँ बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभृता जनन हार जा कैसे उतरी है नानक इस भले हार सुपदी टूटी कांड नहार गोपाल सर्व जी आया आपके प्रतपाल सुगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते व्यर्था कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अपना सी प्रभ आपे आप अपन किया कुछ न हो जिसो प्राणी लोचे कोई तिस बिना ही दे रहे किच काम गत नानक जब एक कर नाम रूप वंत हो ना ही मोह है प्रभु की जो सगल कट सो है धनवंता हो क्या को गर्व है जा सब किस तिसका दिया दर्व है सूरा जी को कहा वह प्रभु की कला बिना कहता वह जी को हुए वह दातार तिस दिन हार जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोच सदा आरोग ज्यो मंदिर को थम मैं थमन त्यों गुरु का शब्द मन अस्तमन ज्यो पाखान आप चढ़तर है प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए बिगा जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात छो तूर नानक की हर लुच्चा पूर मन मूर्ख का ही बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखे अपाई है दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कुछ करे सोई सुखमान पूला गाये फिरे अचान कौन बसताई तीर संग लपट रे रस लो भी पतंग राम नाम जप हृदय माही नानक पद सिद्धि कर जाहि जिस वक्कर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज माले हु मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद के सुनता संचाल अवर त्याग किया जंजाल तन तन कह सब कोई मुख उजल हर तर गए सोये व्यापार विरला व्यापार है नानक था कह सद बलिहार है चरण साधके तो इत पीवर साधको अपना जियो साधगी दूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा विट भागी पाई है साध सुन हर कीर्तन गाई है अनक बेगंत साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस पाख है ऊट गई संत दर आया सर्व सुख नानक थे पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब के जिसको करने जो तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिजन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए त्यों लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रह तो सच हृदय सत मुख तो सची दृष्ट सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नान सोजन सच समाता श्लोक रूप नारेक न रंग किच त्रय गुण ते प्रभिन्न तिसे बजाहि नानका जो वै सो प्रसन्न अष्टपति अविनाशी ब्रह्मन मै राख मानो की तो प्री त्याग तिस्ते पर नाहि किच कोई सब निरंतर एक को सोय आपे बिना आपे ताना कैर गंभीर गई सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्संद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन हो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो गारण परन जाका नित्र होर जिसका मंत्र न जाने होर
अनद रूप मंगल सज्जा कह सर्व तोक सुनिए करता कह राज में राज योग में जो गीता में तो विश्व विश्व में।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाओ तिसकै संग सिखु धरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतिपाल सेवक गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बट भागी हे सतगुर सिक्का हलत पल सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारै गुर कै गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै मन बिचै सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत होए निकामी जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को भल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परमु सह से आन पलया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन फेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुनकर बचन करन आघानी मन संतोखातम पतियानी पूरा गुरख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट भिखै हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए जे बाय कुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचे प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन्हें न पाई अनिक भगत बंधन नित करहै चरण कमल हृदय सिमरहै सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुर का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मुँह माया कै संग न ले पो मन मेरा कै हर हर एक अंधकार दीपक परगा से नानक पर मुँह दुख तहते न से तप्त माय ठाठ वरताई अनंत भया दुख नाठी पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पाओ चुका निरपोहे बसे सगल व्याध मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी सासु जपना मरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हज श्रवण निर्गुणाप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही अपने चल प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी। श्लोक सात न चालै बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक धन सार। उष्टपदी संत जना मिल करो बेचार एक सिमर नाम आधार अवरूपाव समीत विसारू चरण कमल हृदय में उतारू करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ इहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचै मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस सुभा को करै भली करनी
सासोबा पज हर की सरनी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दरगह परवान, मन प्रबुद्ध हर कह नाई, धै दिस्ताव ताव ठाए, ताको बिघ्न न लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए, कलताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिनसै पूर्ण होयास, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाय बसै विनासी, कहु नानक काटी जम फासी, तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा, आवा गुण मिटै प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमरन हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तुम क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुतमीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता, राज रंग माया विस्तारु, इनते कहो कवन छुटकारु, असस्थी रथ सुवारी, झूठा डम झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले यानी, भगत बिना बोडू बेस्यानी, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारु चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विक जाहे, आप जपोरा नाम जपाओ, सुनत कह दरहत कथ पाओ, सार भूसत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ तेरी उत्तर समैल, बिन सुजाए ओम मैं विक फैल, होए चिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सर नाम संभाल, छाड़ सियान सगली मना, साध संग पावे सच तना, हर कुंजी संच करो बिहार, यहाँ सुख धर गय जयकार, सर्व निंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला, एक सिमर एक मन आए, कसके गुण गाओ नंत मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप गुण पूरे हो, प्रभ आपन विसार, एक ते भय कर आद प्राचित गए, मंथन अंतर एक प्रभुराता, गुरु प्रसाद नानक के जाता, श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, पर या तो शरण आए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाइष्ट पति, जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देव हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाऊं, सास सास प्रभु तुम्हें त्याऊं, चरण कमल से लागे प्रीत, भक्त करूं प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्टि मां सुख होए, हरस पावे बिरला कोई, जिन चाखिया से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे, चाओ साध कह संग सरे, परे सरनान सब त्यागंतर प्रगास, अंतिल विलाग बड़भागी, जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु हो दयाल, सेवक किन्नो सदा निहाल, बंधन खाट मुख जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रया सत्संग हजूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने, सो क्यों बिसरै जे सब किश्तिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जगन मै राखै, गुर प्रसाद गुबर लाला कै, सो क्यों बिसरै जे विखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा काढ़ै, गुरु पूरै तथे है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एक काम, मान त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो, भगत पाए करिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुख नित नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल तुका हो तनास, नानक नाम जपो गुणदास,
उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मन तने अंतर ही सुहाओ नित रूपेक दर्शक होए मन बिकसै साथ चरण तोहे। भगत जिना कै मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक बसदी जय करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए। रब बख्शन दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतार भगत जिना के प्राण आधार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावै मनहीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाय अनिक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी सो पातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साल संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक।

फिर जाप उष्टपदी जब कार्य कछ न दृष्टिता पाप तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपने आपा पार ब्रह्म तब वो काक सोवत परमो अपन केला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब मंद मुक्त कौ किस को गनी जब एक कहर गम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभ से सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडारू कवन कत डरे अपन चलता करने हार नानक ठाकुर गम भार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत कौ कीश जय जो स्वरूपी जो संसमावे तय किसे भूख कवन तृप्तावै करण करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद कतेव का कोचीन जब आप

ते कौन ठाकुर कौन कही है चीरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात, नानक अपनी गत जानू आप।

ही प्रवेश। जय कैकेयी भगवंता, सह कौन अचिंत किसला कह चिंता। जय अपन आपा पतियारा, सह कौन कथे कौन सुन नैहारा। बहु बेअंतू छते उच्चा, नानक आपस को आपह पहुँचा। जय आप रचियो प्रपंच का, त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप पुण तय पही कावत, को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोच तू नानक कह। जय अभिगत भगत है आपो,

जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन त नाम जपो लिवलाही, दुख दर्द मन ते हो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह केव तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया बह जाए, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार त्याय, निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभु राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरे अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भई अमरा पद पाया, साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक।

राम संग्रचन जिन जाता तिसकिए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख माने करण करावन हार पर जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनिक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिय दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज से आप जनाई नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूतावरतारा सर्व नैना पेखनहारा सगल समगरी जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मत लिप्तो रह जो किछ कहना सुआपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे ता लै समाए इस्ते हुए सुना ही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आ भला कर तू तत्निकी आपे जाने अपने जी की आप सारी सब साच पूत पूत अपन संग्राच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक कहो जान जो जाने तिसदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन कह है सुहाओ जन कह संचित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार ना

पाया पूरे के गुण गावोष्ट पदि पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक सात सात सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंद आस नित्या गुत्रांग संजना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सास गगन सागर तरहु हर तन के पर ले भंडारो नानु गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सास संपज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग ने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन सुनत कमावत होत उदार आपत रह लो कै निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लाका रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नान कुदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरे नम्रत नाम साध संग लैन सु प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक की सेव हाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुनाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोय सब त्यूच पाए स्थान बहुर न होए आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व थै सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रदास सब कैमत सगल के उदास सुंदर चतुर्थत का वेता सुंदर शीत दृष्टिता हे फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहु निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए

राम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट परासा संग मिटे संत कृपा ते छमते छुट्टे झाके मस्त कर्म प्रभाए सा शरण नानक ते आए जिस

काल उधारे। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहि सुमानी। दुख रोग बिन से पह परमु, साध नाम निर्मलता के कर्म। सब ते

सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का।

कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लेवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइयै किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोई गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या वेखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दिंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जेति सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विचरत न जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनाए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनाए धरत धवल आकाश सुनाए दीपलो पाताल सुनाए पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास सुनाए ईसर ब्रह्मा इंद सुनाए मुख साला हनुमंद सुनाए जोग जुगत तन भेद सुनाए सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास
सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए आठ सठ का स्नान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागै सहज ध्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा की गाह, सुनाए सेख पीर पात साह, सुनाए अंधे पावे राह, सुनाए हाथ हुवे असगाह, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत सिउ प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारी गुर सिख, मन्ने नानक पावह है ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह है दरगा है मान, पंच सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करै विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाउ, विण नावै नाही को थाउ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिय हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए,
भरिय मत पापा कै संग ओह तो पै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनेया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुती माह कवण जित हुआ आकार वेल ना पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव साला ही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दो एक सियाणा वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाने अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कते बा असुलो एक तात लिखा होए ता लिखी है लिखा होए विनाश नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप साला ही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानिय है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़े तुल न होवनी जेतिस मन होना विसरा है अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना देन न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड़ ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जे वड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगै जोध अपार केते गणत नहीं विचार केते खप तुटै वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतेया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाणै जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ही के जिसनु बख से सिफत सलाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारी अमुल भंडार अमुल आवह है अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाह अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखशीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सका है केई के जे वड़ पावै ते वड़ होए नानक जाणै साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावार गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे
गावै तुहनो पौन पाणी बैसंत्र, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जाण है, लिख लिख धर्म विचारी, गावै ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी, गावै इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगामा छुपायाले, गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले, गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तहारे, सही तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करहै बेभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जापी रिद सिद अवरा साद, संजोग विजोग दोए कार चलावह लेखे आवै पाद, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान, हो वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एक दूजी भौ लख होहे लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश, एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोय, राती रुती थेती वार पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखहो कर्म,

डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाण सुख होवै दिन राती।

के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कीतियां ने। सतगुरु जी रहमत करन आप सबना जियां दियां हाजरियां दर प्रवान करके दरो करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दियां दातां तंदुरुस्ती दियां दातां बख्शिश करन। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन प्रारंभ होणगे। गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहिब भाई हरभजन सिंह जी लहरी जी का जथा आप जिया आसा जी की वार के कीर्तन सरवण कराउणगे। आप जिया ने एकाग्रता सतगुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करने जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाव, वड्डी वड्याई जा सच ने।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरहजन तो विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग।

0: नानक में शरीर का एक रथिक रथवाहो, जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझहता है, सतजुग रस संतों का धर्म गैरथवा हो, त्रित रथ जतय का जोर गैरथवा हो, द्वापर तपय का सत गैरथवा हो, कल युग रथगन का पूर गैरथवा हो। महला पहला।
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में।

हुक्मे कढ़दा साहा हे। गुरमुख साचै किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बुझै, शब्द सच्चै सुख ताहा हे। गुरमुख जाता कर्म विदाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरु

वेद पढ़ है पढ़वा बाद बखान है, वेद पढ़ है पढ़ बाद बखान है, घट में ब्रह्म तिस शब्द

गुरमुख सच संयम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, भाई भगत सदा रंग राता।

वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु रूप सा संगत जी, आप जी वडभागी हो जो नितां प्रति गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के इलाही बाणी दे चल रहे श्री सहज पाठ सरवण करते हो, नाल करते हो। गुरदेव जी कृपा करन, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सू संगतां नूं प्रदान करन, पढ़िया सुनिया गाव्या सतगुरु जी हिरदिया विच वसाउण। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुलां हो गई हैं, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने जी, भुलाना चितार दे प्यार सत फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

साहब वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साहब संगत जी, वडभागी हो जो गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है, जो समूह संगतां नूं प्रेरणा ते उद्यम बख्शिश कीता है। साहिब सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे आ रहे पहले प्रकाश पुरब के संबंध अंदर जो समूह संगतां वल्लों श्रद्धा भावना प्यार सहित श्री सहज पाठ प्रारंभ हुए हन, गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने सेवा करनी है सतगुरु कृपा करे सबना दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखे, दे अरोगता की दात बख्शिश करके आप बाणी नूं शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न रूप दी सुनन दी सतगुरु जी आप रहमत करन दी। समूह संगतां दा धन्नवाद, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अचित राज विचलित सुख दुख पाया सोगत पई हमारी। राज प्रियांग प्रसंग जैसे है अब कच मर्म जनाया।

आदेश अतिशय आदेश आद अनिल अनाद नाथ जोग जोग एको वेश एक कम आई चुक्त ब्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिस पावे तिवे चलावे तिव होवे फरमान ओ वेख उन्हां।

0: महत दिसरा दोहिदाई दया खेल सगल जागत जगिया बोरे आया बाते धर्म हजूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम से आया कैम सकत काल नानक ते मुखी उचले केती चुकी नाल।
1: सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंका किते तेरे वावन हारे।

पावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भक्त रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाय ना जासी रचना जिन रचाई

जिसके जी प्राण है मन वस्या सुख होए, जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए, सुजोगी मिल एक सेव जोगी उठ जाए, जो तिस

गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। त्रैविद कर्म कमाइए आस अंदेसा होए, क्यों गुर बिन तुरकुटी छुट सी सच मिलया सुख होए। निज कर मैल पछाणिए नदर करे मल धोए, मेनू

निष्काम निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी सच सोचे सोच न हो गई

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत काल वहां पापी पाप अशंत कूड़े आर करे अशंत मलेर मार पाए अशंत

गुरु तेरे बनाई होए, बिन गुरु कीते मन न होए, बस आकाणी ब्रह्मा सत सुहाण तेरा मन न होए, कमण सुवेला भगत कमण, कमण सिद्ध कमण आ।

कृता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैरम गुरु प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक खुशी सत्य सुचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े यार करे फिराए अशांत मलेच माल पाखाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे क्या बारे न जाना एक जो तुम पावे सही फलिका।

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैनम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सुचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे अशांत मलेच मल पाए अशांत निंद

पास विश्वित तरसी आपकी कर्म कर्मी कर्मी विचार अब सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवन कथ खाई उत पाए नान गया कर्म खंड का एहो।

निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत बल वाए संत पापी पाप असंत मूर यार संत मलेच मल पाए असंत।

कहते हैं उतारना मन कहते कहते रखन तुम हम कितिया पानी कहते पास कितिया भक्ति नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान पर चल।

निर्विकृता निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अंत मूर्ख अंत घोर अंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वह संत पापी पाप असंत मूड़े आए सुधाए संत मलेर मर पाठ है असंत निंदक करें पा नानक नींद कहें मारे न जामा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा संत नाम संत नाम राम राम।

0: अब जाए है साला नी साला है नदियां से बाहर पांचों ना जान समुद्र जा सकता गिरी कुल नौनी
1: अंत में सुखी कहना अंत न करने देना अंत न देखना।

का निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैरम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

महत कले तू जो जी जात रंगा के ना सब नाल के मुड़ी सब एवे काल के जान होए के ता तार सुनले और होवे

सतगुरु तेरे नाही बिन गुरु की कृपा होए स्वस्थ आस पाणी ब्रह्मा सत सुहाग सलाम कवन सुवेला भगत कवन कवन सिद्ध कवन राम कवन सृष्टि महाप्राण वेद न पाइया पंडित।

निष्काम निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैरम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच।

पहर चले क्यों जो जी जात रंगा के ना सब नाल क्या मुड़ी सब एवले काले के जाने होए कितना तान सुनाने आ रहे हूँ

हम मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे बुराए संत मलेच माल पाक खाए असंत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिकार सदा सुना मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

तत् निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े यार करे संत मलेच माल पाए असंत निंदक करें।

पास विश्वित धरती थाप थी धर्म कर्मी कर्मी होए विचार सोहन पंच प्रवान नगरी कर्म सवे कच्छ खाई उठ पाए नानक गया धर्म खंड का।

0: कहते हैं अवतारना मन के से कहते रखन सुंद
1: कितिया पानी कितिया पानी कहते पाप रेंद
0: कितिया सुखी नानक अंत

कृता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध कोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कलवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार करे फिर अशांत मलेच माल पाखाए अशांत

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

निर्विकार निर्भय निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार अशांत मलेच माल पाए अशांत निंद